0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 B23
1: license number 10394।

special. Appointment के लिए 905-400-5410 पर कॉल कीजिए 905-456-2733 Alpha Optical. Your vision is your business.

0: रात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता
1: यहां से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 13 एलिनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन टेलीफोन 905-799-9400

ॐ ॐ शिखायै वसतः ॐ ह्रैं कवचाय हुम् ॐ ह्रौं नेत्रत्रयाय वसतः ॐ ह्राः अस्त्राय वसतः पद ध्यानम् स्वामि वैरवहं वहन्तं शैलं परिशृङ्करमालयाध्यम् दधानमाख्यामाद सुवर्णभरणम् बदीचुरत्कुण्डलमाञ्जनीयम् ॐ नमो भगवते विचित्रवीरहरमते प्रमयकारानप्रभाद्गुणत्वतापवस्त्रदेहाय अञ्जनीर्वन्भूतौ प्रकटविक्रमवीरदैत्य दानवयक्षराक्षसो ग्रहबन्धनाय भूतग्रहप्रिय शाकिनी ग्रह दाकिनी ग्रह काकिनी ग्रह कामिनी ग्रह ब्रह्मग्रह ब्रह्मराक्षसग्रह चोरग्रह बन्धनाय एहि एहि आगच्छागच्छ आवेशयावेशय मम हृदयं प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यं कथय कथय व्याघ्रमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय राजमुखं बन्धय बन्धय समामुखं बन्धय बन्धय शत्रुमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय लंका प्रसाद भञ्जन सर्वजनं मे वशमानय वशमानय श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वानाकर्षय आकर्षय शत्रून् मर्दय मर्दय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे खे खे श्रीरामचन्द्राज्ञया प्रज्ञा मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु मम शत्रून् भस्मी कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रैं ह्रों ह्रः फट् श्री विचित्रवीर हनुमते मम सर्वशत्रून् भस्मी कुरु कुरु हर हर हूं फट् स्वाहा एकादश शतवारं गृहीत्वा सर्वशत्रून् वशमानयति नान्यथा इति श्री विचित्रवीर हनुमन् माला मन्त्राः सम्पूर्णम् कार्य से

0: రక్తాంబర పాతు నేత్రే మే రక్తలోచన నాసికా మే శక్తిధర కంఠం మే పాతు భౌమక భుజం తు రక్తమానే చ చతుర్భుజు మే దయం ముక్షిం రోగాపహారక కగే భూమిడః
1: सभी को नमस्कार सत श्री अकाल आदाब जय हम यहाँ अली मदद और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो आपके लिए बहुत बढ़िया सा प्रोग्राम है। आपके लिए लेबर डे लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, तो आपको जितने भी घूमना है फिरना है, बहुत सारे काम भी करने हैं, तो आप जरूर अपने पूरे काम करिएगा और साथ में अपना एंजॉयमेंट भी करिएगा। बट डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स बिजी हो गए हैं, बिजी हैं, बच्चों की तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने की। तो सभी के बच्चों को लिए शुभ इच्छाएं हम देते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें, पढ़ाई करें और अच्छे अच्छे मार्क लेके आए। यूनिवर्सिटी जिनके बच्चे जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। जिनके बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे हैं उनको भी बहुत सारी बधाई।

0: ਸੋਲਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ, ਪਿਸਤਾ, ਰਸਗੁੱਲੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਸਵੀਟਸ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 1850 ਐਲਬਨ ਰੋਡ ਈਟੋਬੀਕੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1135।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है डॉक्टर सार में। तो अब आपने अगर किसी किस्म का फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर अपने घर में लेके आना है और साथ में आपको बढ़िया टीवी लेना है, लेटेस्ट किचन की गैजेट चाहिए, तो आउटडोर फर्नीचर चाहिए, आउटडोर बारबेक्यू चाहिए, ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप topchoiceelectronics.com पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, 905-799-0045 टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। हैमिल्टन वासियों, कि तुसी अपनी अगली कार लब रहे हो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5000 तों लैके $1,00,000 तक। ते फाइनेंस दा चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तों शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहंदे हो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। 4 ਟਾਇਰਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BBT ਰੋਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ AM530 ਤੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ BBT ਰੌਕ ਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-3840 365-384-3840। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, 365-384-3840 365-384-3840 BBT ਰੌਕ ਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲਸ। BBT ਰੌਕ ਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਮੇ। तो अब अगर आपने मूव है तो HK मूवर्स को आप कॉल कीजिएगा। HK मूवर्स कनाडा भर में आपको मदद करते हैं मूव होने में। तो उनकी जो लोकेशन है वो आपके लिए ब्रैम्पटन में है। तो किसी तरह की भी आपको मूविंग करनी है तो आज ही उनको कॉल करिएगा 416-524-7804-1652-46704। HK मूवर्स, आपकी मूव होने की जो समस्या है वो एकदम उनको कॉल करने से हल हो जाती है, क्योंकि मूव होना कोई आसान चीज नहीं होती है, किसी के लिए भी बहुत बहुत सारे काम होते हैं मूविंग में। तो आपका जो एक बार आप ट्रक बुक करोगे तो बस फिर आपका जो मूव होने का काम है वो समझ लो हो गया। HK मूवर्स 416-524-6704। अगर आप हैमिल्टन में रहते हो, आपको गाड़ी ठीक करानी है, उबर की अथॉरिटी चाहिए, या फिर उबर की आपको किसी तरह की भी सर्टिफिकेशन करवानी है तो आप योगीश ऑटो जो कि 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट डाउनटाउन स्टोनी क्रीक में मौजूद है, तो आपको बहुत बढ़िया सर्विस देंगे। कार के टायर चाहिए, कार को विंटराइज करवाना है, ट्यून अप करवाना है, तो आप योगीज ऑटो सेंटर में जाइए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन। तो और जानकारी के लिए आप योगीज ऑटो सेंटर के पास अपनी 70-80 टैक्सीज हैं। अगर आप हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो तो आप योगी ऑटो सेंटर वालों को कॉल करिए, मिस्टर गिल को 905-547-6464 पे आप योगी ऑटो सेंटर को कॉल कर सकते हो। अगर आप लंदन के आसपास रहते हो, आपके लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि अभी आपको आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो खुल चुका है लंदन में, तो वहाँ पे आपकी इमेज ऐसा बना देते हैं, तो mastercollisiondepot.com पर जाकर आप उनकी और जानकारी ले सकते हो। तो अब अगर आपने किसी तरह के भी, आप हैमिल्टन के इलाके में रहते हो, आपको किसी तरह की भी आपने गाड़ी की विंटराइज ट्यूनअप करवानी है तो आप योगी ऑटो सेंटर जाइए। अगर आपने अथॉरिटीज करवानी है, उबर टैक्सी की आपने टैक्सी ली है, तो वो सारी सर्विसेज आपको योगी ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट आपके लिए स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है। और जानकारी के लिए आप मिस्टर गिल को कॉल कर सकते हो योगी ऑटो सेंटर, तो 905-547-6464 योगीज ऑटो सेंटर हैमिल्टन। तो अगर आपने किसी किस्म की भी आपको ट्रक रिपेयर करवानी हो तो आप जा सकते हो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर पे। आप जाइए, आपको बहुत बढ़िया सर्विस मिले। 905-625-6206 तो आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, तो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, आप जरूर एंजॉय कीजिएगा, सुनिएगा। और आपके लिए ये जो लॉन्ग वीकेंड है बड़ा स्पेशल है, और बहुत सारी शुभकामनाएं, और बच्चों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो गाने हैं ये बहुत 1962 फिल्म की आरती, तो रफी साहब का गाया हुआ गीत है।
2: अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब।

0: है, तो उम्मीद रखती हूँ आपको ये गाना बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आगे भी चलकर आपको बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाने वाले हैं हम। तो पहले आपको बता दें कि अगर आप अपने घर में अपने घर खरीदा है जहाँ पर बेसमेंट बनवाई है, आपको फ्रिज चाहिए, स्टोव चाहिए, तो आप अगर
1: But it's also a whole event just to get there. Parking's an event. Rideshares boost prices because they know event to hold it. But here's something.
0: हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेना है, आपको बेसमेंट बनवाई है, आपने जब घर लिया है, या फिर आपको नया लेटेस्ट टीवी चाहिए, लेटेस्ट के साथ मान आपको मिलेगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर उनका जो लॉन्ग वीकेंड स्पेशल्स हैं वो आप देखिएगा और फिर आप अपने ऑर्डर बुक करिएगा। ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल करिए, 905-799-0045 पे कॉल करिएगा। तो अगर आपने कार ट्यून अप करवानी है, या फिर आपने हैमिल्टन में टैक्सी चलानी है, तो योगीज ऑटो सेंटर वालों के पास 70-80 अपनी टैक्सी है, तो आप उनको कॉल कीजिए। आपने उबर की अथॉरिटीज उनकी सर्टिफिकेशन करवानी है, तो वो भी आप मिस्टर गिल को कॉल करिएगा योगीज ऑटो सेंटर पे, 905-547-6464। तो अब आपके लिए कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये गीत आपके लिए जो ट्रैक है वो पेश कर रहे हैं। उम्मीद रखती हूँ कि आपको

0: की दुआएं कहे, तेरी जोड़ी सलामत रहे।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो ये जो लॉन्ग वीकेंड, लेबर लॉन्ग वीकेंड होता है, ये सिर्फ स्कूल जाने के शुरुआत नहीं होती है। इसमें अभी जन्माष्टमी थी, सभी मंदिरों में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई, और अभी भी मंदिरों में लोग जा रहे हैं, झूला झूला रहे हैं कृष्ण कन्हैया को, बेबी कृष्णा को। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि शादियां बहुत होती हैं लेबर डे लॉन्ग वीकेंड में, बहुत सारी है शादियां होंगी इस लॉन्ग वीकेंड में, तो शादियों में अटेंड करेंगे। तो तभी मैंने ये जो गाना लगाया था, बड़ा फेस्टिव सा गाना है, तो इसलिए मैंने ये वाला गाना आपके लिए लगाया है। तो उम्मीद रखती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। इसी तरह हम जितनी देर भी हमारा साथ है, बढ़िया सा आपका मनोरंजन करते रहेंगे। और ये कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन है, तो राधा का गाना भी जरूर लगाएंगे। जी हाँ, तो वो वाला गाना भी आपको जरूर सुनाया जाएगा। पर पहले आपको बता दें कि अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वॉशर ड्रायर या बढ़िया क्वालिटी का आपने टेलीविजन लेना है, तो ये सारा सामान आपको मिलता है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स के, बहुत बढ़िया रेट में मिलता है। तो आप वहाँ पे जाइए और उनकी स्पेशल्स का, जो लेबर डे स्पेशल है, लॉन्ग वीकेंड स्पेशल है, उनका फायदा उठाइएगा। तो ये जो आपके लिए है, तो आपको अगर बहुत बढ़िया सी आपको टीवी लेनी है, या फिर आपने आउटडोर फर्नीचर लेना है, घर में फर्नीचर लेना है, बढ़िया क्वालिटी बढ़िया प्राइस, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। एक लोकेशन उनकी इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड ब्रैम्पटन में है, दूसरी लोकेशन ग्वाल्फ में। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, उनकी स्पेशल देखिए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-700-0045 पर कॉल कीजिए। अगर आप मूव होने वाले हैं, HK मूवर्स को कॉल कीजिए 416-524-7046-524-6704। और लंदन वासियों के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए आपके शहर में मास्टर कोलिजन डिपो खुल चुका है गोर रोड पे। वहाँ पे जाइए, अपनी कार वैन ट्रक का कोई भी कोलिजन का काम करवाना है करवाइए, तो आप को बहुत बढ़िया आपको काम करके देंगे। तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाइए और उनके बारे में और जानकारी लीजिए।

जैसे मैंने कहा कि आपका लॉन्ग वीकेंड है, साथ में अपना ख्याल रखिए, प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी सुरक्षा रखिए, अपने परिवारों के साथ बड़ा अच्छा, बहुत सारे लोग पिकनिक कर रहे हैं, बहुत जैसे आप तो अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाऊंगी। तो ये जो गाना है ये भी राधा वाला है, तो कृष्णा के लिए ही हम ऐसे गीत आपको सुनाएंगे थोड़े से। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। हैव ए सेफ वीकेंड एंड अ ग्रेट वीकेंड, प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, और खुद भी एंजॉय कीजिए, अपने आसपास वालों को भी एंजॉय करवाइएगा, उनकी खुशी का भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने आसपास के लोगों की खुशी का ध्यान रखेंगे तो वो सब कितने सारे लोग आपकी खुशी का भी ध्यान रखेंगे। इसी विचार के साथ नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी स्वाद दा पगा है वंडरफुल वीक।

0: special.
1: अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5033 पर कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस.

जमनी पार सब लोग सवारा जमनी पार है तारे हमारा जमनी पार सब जगत बनायो मेरी है जल चल।

0: नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता
1: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन टेलीफोन 905-799-9400।

निधायै वचतः ॐ ह्रैं कवचाय हुम् ॐ ह्रौं नेत्रत्रयाय वचतः ॐ ह्राः अस्त्राय वचतः पद ध्यानम् स्वामि हरिवैरवहं वहन्तं शैलं परिशृङ्करमालयाध्यम् दधानमाख्यामाद सुवर्णभरणम् पदीज्वलत्कुण्डलमाञ्जनीयम् ॐ नमो भगवते विचित्रवीरहनुमते प्रलयकालानन प्रभाज्वलत्वतापवस्त्रदेहाय अञ्जनीकर्मभूतौ प्रकटविक्रमवीरदैत्य दानवयक्षराक्षसो ग्रहबन्धनाय भूतग्रहप्रिय शाकिनी ग्रह डाकिनी ग्रह काकिनी ग्रह कामिनी ग्रह ब्रह्म ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह चोर ग्रह बंधनाय आगच्छागच्छ आवेशयावेशय मम हृदयं प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यं कथय कथय व्याघ्रमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय राजमुखं बन्धय बन्धय सभामुखं बन्धय बन्धय शत्रुमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय लंका प्रसाद भञ्जन सर्वजनं मे वशमानय वशमानय श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वानाकर्षय आकर्षय शत्रून्मर्दय मर्दय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे खे खे श्रीरामचन्द्राज्ञया प्रज्ञा मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु मम शत्रून्भस्मि कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रैं ह्रों ह्रः फट् श्री विचित्रवीर हनुमते मम सर्वशत्रून् भस्मी कुरु कुरु हर हर हूं फट् स्वाहा एकादश शतवारं जपित्वा सर्वशत्रून् वशमानयति नान्यथा इति इति श्री विचित्रवीर हनुमन् माला मन्त्राः सम्पूर्णम् कार्यसे

0: पातुमतः भुजौ तु रक्तमाने च चतुर्भुजो मे दयम् मुक्षिमोदापारक कहे भूमिजः
1: सभी को नमस्कार सत श्री अकाल आदाब जय हम यहाँ अली मदद और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो आपके लिए बहुत बढ़िया सा प्रोग्राम है। आपके लिए लेबर डे लॉन्ग वीकेंड चल रहा है तो आपको जितने भी घूमना है फिरना है बहुत सारे काम भी करने हैं तो आप जरूर अपने पूरे काम करिएगा और

0: विश्वास कर असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड स्वीट्स ऑल तीन लोकेशन तो सर्व करते ने टू इन ब्रैम्पटन 1850 एल्ड्रन रोड इटोबीको वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1150
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है डॉक्टर सार में। तो अब आपने अगर किसी किस्म का फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर अपने घर में लेके आना है और साथ में आपको बढ़िया टीवी लेना है, लेटेस्ट किचन की गैजेट चाहिए, तो आउटडोर फर्नीचर चाहिए, आउटडोर बारबेक्यू चाहिए, ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप topchoiceelectronics.com पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, 905-799-0045 टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। हैमिल्टन वासियों, कि तुसी अपनी अगली कार लब रहे हो ता अज ही पहुंचो बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5000 तों लैके $100,000 तक, ते फाइनेंस दा चिंता ना करो। इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तों शुरू अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहंदे हो ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। 4 ਟਾਇਰਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BBT ਰੋਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ AM530 ਤੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ BBT ਰੌਕ ਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-3840 365-384-3840। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ 365-384-3840 365-384-3840 BBT ਰੌਕ ਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲਸ। BBT ਰੌਕ ਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਮੇ। तो अब अगर आपने मूव है तो HK मूवर्स को आप कॉल कीजिएगा। HK मूवर्स कनाडा भर में आपको मदद करते हैं मूव होने में। तो उनकी जो लोकेशन है वो आपके लिए ब्रैम्पटन में है। तो किसी तरह की भी आपको मूविंग करनी है तो आज ही उनको कॉल करिएगा 416-524-7404 HK मूवर्स। आपकी मूव होने की जो समस्या है वो एकदम उनको कॉल करने से हल हो जाती है, क्योंकि मूव होना कोई आसान चीज नहीं होती है, किसी के लिए भी बहुत बहुत सारे काम होते हैं मूविंग में। तो आपका जो एक बार आप ट्रक बुक करोगे तो बस फिर आपका जो मूव होने का काम है वो समझ लो हो गया। HK मूवर्स 416-524-6704। अगर आप हैमिल्टन में रहते हो, आपको गाड़ी ठीक करानी है, उबर की अथॉरिटी चाहिए, या फिर उबर की आपको किसी तरह की भी सर्टिफिकेशन करवानी है तो आप योगीश ऑटो जो कि 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट डाउनटाउन स्टोनी क्रीक में मौजूद है, तो आपको बहुत बढ़िया सर्विस देंगे। कार के टायर चाहिए, कार को विंटराइज करवाना है, ट्यून अप करवाना है, तो आप योगी ऑटो सेंटर में जाइए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन। तो और जानकारी के लिए आप योगी ऑटो सेंटर के पास अपनी 70-80 टैक्सीज हैं। अगर आप हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो तो आप योगी ऑटो सेंटर वालों को कॉल करिए, मिस्टर गिल को 905-547-6464 905-547-6464 पे

0: आप योगी ऑटो सेंटर को कॉल कर सकते हो। अगर आप लंदन के आसपास रहते हो, आपके लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि अभी आपको आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो खुल चुका है लंदन में। तो वहाँ पे आपकी मेज जैसा बना देते हैं। तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनकी और जानकारी ले सकते हो। तो अब अगर आपने किसी तरह के भी, आप हैमिल्टन के इलाके में रहते हो, आपको किसी तरह के भी आपने गाड़ी की विंटराइज ट्यून अप करवानी है तो आप योगीज ऑटो सेंटर जाइए। अगर आपने अथॉरिटीज करवानी है, उबर टैक्सी की आपने टैक्सी ली है, तो वो सारी सर्विसेज आपको योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट आपके लिए स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है। और जानकारी के लिए आप मिस्टर गिल को कॉल कर सकते हो योगीज ऑटो सेंटर। तो 905-547-6464, 905-547-6464, योगीज ऑटो सेंटर हैमिल्टन। तो अगर आपने किसी किस्म की भी आपको ट्रक रिपेयर करवानी हो तो आप जा सकते हो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर पे। आप जाइए, आपको बहुत बढ़िया सर्विस मिलेगी। 905-626-2 तो आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, तो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, आप जरूर एंजॉय कीजिएगा, सुनिएगा। और आपके लिए ये जो लॉन्ग वीकेंड है बड़ा स्पेशल है। और फीस बहुत सारे जाने की इशू है, बच्चे स्कूल आ रहे हैं, पेरेंट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं और बच्चों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो गाने हैं ये बहुत 1962 फिल्म की आरती, तो रफी साहब का गाया हुआ गीत है। लेट्स
1: अब क्या मिसाल दो मैं तुम्हारे शबाब।

0: है, तो उम्मीद रखती हूँ आपको ये गाना बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आगे भी चलकर आपको बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाने वाले हैं हम। तो पहले आपको बता दें कि अगर आप अपने घर में अपने घर खरीदा है, जहाँ पर बेसमेंट बनवाई है, आपको फ्रिज चाहिए, स्टोव चाहिए, तो आप अगर
1: But it's also a whole event just to get there. Parking's an event. Rideshares boost prices because they know when to hold it. But here's something.
0: हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेना है, आपको बेसमेंट बनवाई है, आपने जब घर लिया है, या फिर आपको नया लेटेस्ट टीवी चाहिए, लेटेस्ट के साथ सामान आपको मिलेगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर उनका जो लॉन्ग वीकेंड स्पेशल्स हैं वो आप देखिएगा और फिर आप अपने ऑर्डर बुक करिएगा। ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल करिए, 905-799-0045 पे कॉल करिएगा। तो अगर आपने कार ट्यून अप करवानी है, या फिर आपने हैमिल्टन में टैक्सी चलानी है, तो योगी ऑटो सेंटर वालों के पास 70-80 अपनी टैक्सी है, तो आप उनको कॉल कीजिए। आपने उबर की अथॉरिटीज उनकी सर्टिफिकेशन करवानी है, तो वो भी आप मिस्टर गिल को कॉल करिएगा योगी ऑटो सेंटर पे 905-547-6464। तो अब आपके लिए कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये गीत आपके लिए जो ट्रैक है वो पेश कर रहे हैं। उम्मीद रखती हूँ कि आपको

0: की दुआएं कहे, तेरी जोड़ी सनम कहे।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है गैस संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो ये जो लॉन्ग वीकेंड, लिबरल लॉन्ग वीकेंड होता है, ये सिर्फ स्कूल जाने के शुरुआत नहीं होती है। इसमें अभी जन्माष्टमी की सभी मंदिरों में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई, और अभी भी मंदिरों में लोग जा रहे हैं, झूला झूला रहे हैं कृष्ण कन्हैया को, बेबी कृष्णा को। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि शादियां बहुत होती हैं लेबर डे लॉन्ग वीकेंड में, बहुत सारी है शादियां होंगी इस लॉन्ग वीकेंड में। और शादियों में अटेंड करेंगे, तो तभी मैंने ये जो गाना लगाया था, बड़ा फेस्टिव सा गाना है, तो इसलिए मैंने ये वाला गाना आपके लिए लगाया है। तो उम्मीद रखती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। इसी तरह हम जितनी देर भी हमारा साथ है, बढ़िया सा आपका मनोरंजन करते रहेंगे। और ये कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन है, तो राधा का गाना भी जरूर लगाएंगे। जी हाँ, तो वो वाला गाना भी आपको जरूर सुनाया जाएगा। पर पहले आपको बता दें कि अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वॉशर ड्रायर या बढ़िया क्वालिटी का आपने टेलीविजन लेना है, तो ये सारा सामान आपको मिलता है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स के, बहुत बढ़िया रेट में मिलता है। तो आप वहाँ पे जाइए और उनकी स्पेशल्स का, जो लेबर डे स्पेशल है, लॉन्ग वीकेंड स्पेशल है, उनका फायदा उठाइएगा। तो ये जो आपके लिए है, तो आपको अगर बहुत बढ़िया सी आपको टीवी लेनी है, या फिर आपने आउटडोर फर्नीचर लेना है, घर में फर्नीचर लेना है, बढ़िया क्वालिटी बढ़िया प्राइस, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। एक लोकेशन उनकी इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड ब्रैम्पटन में है, दूसरी लोकेशन ग्वाल्फ में। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, उनकी स्पेशल देखिए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-700-0045 पर कॉल कीजिए। अगर आप मूव होने वाले हैं, HK मूवर्स को कॉल कीजिए 416-524-6-524-6704। लंदन वासियों के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए आपके शहर में मास्टर कोलिजन डिपो खुल चुका है गोर रोड पे। वहां पे जाइए, अपनी कार वैन ट्रक का कोई भी कोलिजन का काम करवाना है, करवाइए, तो आप को बहुत बढ़िया आपको काम करके देंगे। तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाइए और उनके बारे में और जानकारी लीजिए।

आपका स्वागत है खर्चा साथ में। और जैसे मैंने कहा कि आपका लॉन्ग वीकेंड है, साथ में अपना ख्याल रखो। प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी सुरक्षा रखिए, अपने परिवारों के साथ बड़ा अच्छा। बहुत सारे लोग पिकनिक कर रहे हैं, बहुत जैसे आप तो अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाऊंगी। तो ये जो गाना है ये भी राधा वाला है, तो कृष्णा के लिए ही हम ऐसे गीत आपको सुनाएंगे थोड़े से। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। हैव ए सेफ वीकेंड एंड अ ग्रेट वीकेंड। प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, और खुद भी एंजॉय कीजिए, अपने आसपास वालों को भी एंजॉय करवाइएगा, उनकी खुशी का भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने आसपास के लोगों की खुशी का ध्यान रखेंगे तो वो सब कितने सारे लोग आपकी खुशी का भी ध्यान रखेंगे। इसी विचार के साथ नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी स्वाद दा पला है वंडरफुल गीत देख।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट

लैंडिंग करवा के फिर इस नूं फिर थल्ले तारिया गया ते अरेस्ट भी कर लिया गया। हालांकि की ना है की पूरी डिटेल्स हैं इस पैसेंजर दियाँ तां रिलीज़ नहीं हुईयां, पर फिर जदों ये पैसेंजर नूं छड़ दिता गया फिर जाके फ्लाइट जो है वो दोबारा तुरी ते फिर न्यूयॉर्क वल गई। सो अजिहा किस्सा जो है ये पहला किस्सा नहीं है, इस तो पहला भी 1924 दे विच एक पैसेंजर जो है वो डोर ओपन करन दी कोशिश जो है वो फ्लाइट दे विचकार ही करन दी कोशिश करदा सी, उस नूं भी डक्ट टेप दे नाल सीट ते बन्निया गया सी। ते फिर अजिहे किस्से जो ने हालांकि असी घट वध ही सुनदे हां, पर जे इस पूरे साल दी गल करिए ते 1160 दे करीब अजिहे इंसीडेंट्स जो ने वो जरूर रिपोर्ट हुए ने। सो फ्लाइट दे विच अजिहा भी कुछ हो जांदा है ते जिथे, पर चलो सेफ्टी जो है वो बाकी सारे पैसेंजर्स दी जो प्रायोरिटी मनी जांदी है फिर कंपनी वालों, ते फिर एमरजेंसी लैंडिंग दी लोड होवे ते फिर वो भी जो है अध विचकार जरूर करवाई जांदी है। सो अजिहे पैसेंजर्स नूं फिर इस तरह ही नहीं छड्डिया जांदा ते भारी फाइनस भी हुंदे ने, जिथे $43,000 तो वध फाइन अजिहे पैसेंजर्स दे अगेंस्ट हुंदे ने जो कि फिर फ्लाइट दे विचकार इंटरफेयर करदे ने या फिर थ्रेटन करदे ने या इस तरह एक वॉयलेंट बिहेवियर जो शो करदे ने। सो एक दायरे दे विच रहना जदों जदों तुसी कितें पब्लिक दे विच बैठे हो, खास तौर ते फ्लाइट जिथे अंबरां ते तुसी हो ते उत्थे फिर अपनी रिस्पोंसिबिलिटी जो है वह थोड़ी ज़्यादा जरूर बन जाती है। चलो कारण जो भी रहे कि क्यों बैठे बिठाई यह बंदा जो है यह वॉयलेंट हो गया, पर फिर जो भी मेजर्स जो सी जो फ्लाइट अटेंडेंट्स नूं लैने पए ते उस नाल जो है सेफ्टी जो है बाकी पैसेंजर्स दी वह जरूर ली गई। सो जी प्रोग्राम पंजाबी लहरा रेडियो थोड़े सफ़र का साथी, ते मैं थानू रेडियो राही ये जानकारी भी जरूर देवां जी कि तुसी हाले तक अपने घरदियां दी सुरक्षा दे लई भविख दे लई, क्योंकि भविख जो है प्लानिंग असी खूब करदे हुन्ने आ पर असल प्लानिंग तां उस परमात्मा ने ही कीती हुंदी है। सो तुसी हाले तक इंश्योरेंस जेकर नहीं लई ते हरप्रीत सैणी जी दा नंबर तुसी जरूर नोट करो जो कि अच्छे इंश्योरेंस एडवाइजर ने टॉप चॉइस इंश्योरेंस तो, ते बहुत लंबे सालां तो इस फील्ड दे विच ने ते पूरे जाणू ने कि पॉलिसी थानू किवें फिट बैठेगी, कि थोड़े लिए जरूरी है थोड़े काम नू देखदिआं, ते जेकर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स सुपर वीज़ा वेस्टर वीज़ा ते बाकी रिलेटिव्स भी आ रहे ने ते किन्नी जरूरी जो है, चलो सुपर वीज़ा लई तां इंश्योरेंस मैंडेटरी ही है पर वेस्टर वीज़ा दे लई भी कोई चलो महीने लई आ रहा है 15 दिनां लई आ रहा है, पर किन्नी जरूरी जो है इंश्योरेंस बन जाती है इस मुल्क दे विच। सो इस बारे तुसी पूरी जानकारी लो, कंसल्ट करो हरप्रीत सैणी जी नू, नंबर है 416-817-6500 416-817-6500 ਤੇ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਜੋ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜੋ ਹੈਲਥ ਡੈਂਟਲ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 416-817-6500 416-817-6500 ਜੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਗੀਤ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਜੋ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੀ ਆਓ ਮਾਣੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ठीक 8 बजे तक ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: गार्निशमेंट, पावर ऑफ सेल नोटिस, बैंक वालों पैसे दी मंग, उन्हें ही सानू कॉल करो, फिर तो अनु कोई नहीं कर सकेगा तंग। कर्जा माफ कराओ, 100% मानसिक शांति पाओ, कलेक्शन कॉलों तो छुटकारा, बिना ब्याज निकिया निकिया किश्तां। कॉल करो कनाडा कंज्यूमर क्रेडिट असिस्टेंस 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दंगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, हेल्पिंग यू टू फुलफिल योर रियल एस्टेट प्लान्स।
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 G Media Group।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: विजिटर टू कनाडा आउट ऑफ प्रोविंस कवरेज बाय करना चाहते हो या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस दे बेस्ट रेट्स बेस्ट प्लान्स एट द बेस्ट ऑप्शन बारे

ਜਾਂ ਫਿਰ 40-45% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ 647-4000-88-62 इश्तिहार है तो व्यापार है अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-4000-88-62 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए। Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
1: ਚੰਗੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਮੈਕਸ ਗੋਲਡ ਰਿਐਲਟੀ ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹੋ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਔਰ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰ ਰੀਟੇਲ ਯੂਨਿਟਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। Harjinder Gill, with vast variety of marketing, promotions and showcasing your next home deal, Harjinder Gill is the name to call at 647-400-6862 or visit teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
2: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।
3: दोस्तों स्वागत है तुहाडा एक बार फिर रेडियो रम्स पंजाबी द वीकेंड शो ते मैं प्रभजीत बोपर तुहाडा स्वागत करदा जी। इस वेले समा 12:48 हो गए जी, जिथे हर एतवार तुहाडा साडा साथ 2 घंटे का रहिंदा जी, 12 बजे तो लैके 1 बजे तक रेडियो रम्स पंजाबी ते 1 to 2 रेडियो नज़रिया दा तुहाडा साडा साथ हुंदा जी। ते तुसीं जे तुसीं स्टूडियो 'च कोई कॉल करना चाहुंदे हो, कोई लौंग विंगड दे रिलेटेड, लेबर डे दे रिलेटेड कोई गल करना चाहुंदे हो, ते स्टूडियो दा नंबर है 416-233-7368 ते 416-233-8297। ते दोस्तों अपने शहर दे विच सुनंदा शर्मा दा लाइव इन कंसर्ट द विक्टरी टूर 2026 होने जा रहा जी, तो इस दे वास्ते सोलो टूर है जी, उन्हां दा इकल्ले ही गाउणगे सुनंदा शर्मा दे स्टेज ते रौनकां लाउणगे, जिहड़ा एतवार अक्तूबर 18 द ग्रेट द थिएटर एट ग्रेट कनेडियन टोरंटो दे विच होने जा रहा जी। उस दे वास्ते टिकटां अवेलेबल ने, तुसीं ticketmaster.ca तो टिकटां खरीद सकते हो, तो जां वधेरे जानकारी लई तुसीं 647-400-6862 हरजिंदर गिल साहब उन्होंने नंबर है जी। इस दे बाद जे तुसीं कोई स्पॉन्सरशिप तुसीं देना चाहुंदे हो जां कोई टिकटां दे रिलेटेड कोई गलबात करनी है, तो तुसीं साडे जी मीडिया ग्रुप 647-400-6862 दे उत्ते संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों एक स्पेस ऑफिस स्पेस रेंट दे उत्ते अवेलेबल है जी, ट्रेनमेंट ड्राइव दे उपर डेयरी एंड डिक्सी का इंटरसैक्शन पैंदा जी नीयर वे। तो इस वास्ते मनजीत गिल साहब होना संपर्क कर सकते हो 416-669-1389। तो गिल साहब होना मनजीत गिल वीर ही 2 bedroom की कोंडो अपार्टमेंट वाटरलू यूनिवर्सिटी के एरिए चाहिए वे आस पास, जे कोई वेचना चाहता वीर भैन भरा तो वो वास्ते मनजीत गिल साहब होना संपर्क कर सकते हो 416-669-1389। तो दोस्तों मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक तो बाद।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-4000-88-12 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

0: सकता कोई रीज।
1: असी हाँ कल्चर ऑफ पंजाब,
2: कल्चर ऑफ पंजाब
0: बेहतरीन पंजाबी एंटरटेनमेंट की मुंह बोल दी तस्वीर। एशियन कम्युनिटी का मनपसंद रेडियो शो कल्चर ऑफ पंजाब
1: तेजी नाल बज रहे रेडियो शो जिसको

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
1: एक आदेश रहते हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
2: ऐसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-455-3381 ते 4567-3381 ते
1: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-455-3381 416-455-3381

0: ट्रेनिंग ए कोर्स ग्रुप विच ते वन ऑन वन लई भी अवेलेबल है। इस तो अलावा असी शुरू करन जा रहे ने शॉर्ट कोर्सेज बुक कीपिंग ते क्विक बुक सॉफ्टवेयर दे उन्हां लोकां लई जो अपना बिजनेस रन करदे ने ते अपनी बुक कीपिंग भी आप ही करना चाहुंदे ने। अगर कोई अकाउंट पेलेबल रिसीवेबल क्लर्क दी जॉब चाहुंदा है ते ए कोर्स उन्हां लई सुटेबल है क्योंकि ए स्क्रैच तो शुरू होंदा है ते अगर किसी नूं अकाउंटिंग बिल्कुल भी नहीं सीखी ओ ए कोर्स ज्वाइन करके अपना करियर चेंज कर सकदा है एक अच्छी वाइट कॉलर जॉब लई। क्वींसवुड कॉलेज होर भी कई सारे डिप्लोमा शुरू कर रहा है जिवें कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग डिप्लोमा, डेटा एनालिस्ट डिप्लोमा, मेडिकल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फूड सर्विस वर्कर जिन्हां नूं डाइटरी एड डिप्लोमा भी कहिंदे आ। इन्हां कोर्सेज दी होर जानकारी लई तुसीं साडी वैबसाइट queenswoodcollege.com तों देख सकदे हो या फोन करके सानूं मिल सकदे हो अपॉइंटमेंट नाल। कॉलेज 7 दिन ओपन होंदा है, एक बारी आके साडे एडमिशन काउंसलर नूं जरूर मिलो। कॉलेज दा फोन नंबर है 905-872-0088, 905-872-0088। वॉक इन दे लई कॉलेज दा एड्रेस है 2023 विलियम्स पार्कवे ईस्ट यूनिट 3 ब्रैम्पटन ते मेजर इंटरसेक्शन विलियम्स पार्कवे ते एयरपोर्ट रोड। अगर कोई भी अपने आप नूं अपग्रेड करना चाहुंदा है, सेकंड करियर विच जाना चाहुंदा है, सानूं एक बारी जरूर संपर्क करो। साडा मकसद सिर्फ कोर्स कराना नहीं बल्कि स्टूडेंट नूं कॉन्फिडेंस स्किल ते करियर अपॉर्चुनिटी देना है। धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर तुसी गलबात करो क्वींसवुड कॉलेज दे नाल, नंबर है 905-872-0088, 905-872-0088 दे उपर तुसी गलबात कर सकदे हो क्वींसवुड कॉलेज दे नाल। अगले कॉलर 1000। हांजी सत श्री अकाल।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
2: ਸਹੀ ਹੰਸਰਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਦੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰੁੱਸ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਨਾਓ ਕੌਣ ਵੀ।
1: ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰੁੱਸ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ 9057 ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
3: ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
3: ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਐਕਚੁਲੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੈਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡੀਲ?
1: ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ 647।
3: ਹਾਂਜੀ।
1: 201।
3: ਹਾਂਜੀ।
1: 1313।
3: 1313।
1: ਹਾਂਜੀ,
3: ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ? ਰਾਇਲ
1: ਰਾਇਲ ਡਿਜੀਟਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਬਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ।
4: ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में